रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लाभ T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lola T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

ये फ्रेंड्स रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मस्ता शो व्हाट्सअप मैं हूं आपका साथी आरजे जिस एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड क्योंकि दोपहर के 12 बजे तक दिस रॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। याद रखिए व्हाट्सअप जो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इज द नंबर। नौ सिफर चोर आप कॉल कर सकते हैं वो सब या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल से रहे धड़का धर।

यहाँ स्पीकर तो बजने ही है, रेडियो चैनल की हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पर अपन एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। वो सब और स्पीकिंग से हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। दोस्तों आपने भी शो का हिस्सा बना, यू नो इट, नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है 8899904904। कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। डीएम करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो इंस्टाग्राम पर मिलूंगा। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, और साथ ही साथ डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार से धड़काते रहो।

0: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। हर दिल की धड़कन को धड़काने के लिए अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर। रेडियो चैनल 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो के ढेरों सेगमेंट्स और सेगमेंट्स में से खास हम खास, जी हाँ ब्रदर, आज का वेदर।
1: रेडियो

0: Radio Chennai. Weather update.
1: मेरी जान, आज का मौसम कैसा होगा? जैसा आपने सोचा वैसा होगा।
0: वेदर अपडेट। रेडियो चिन्ना वेदर अपडेट। रेडियो चिन्ना वेदर अपडेट।
1: आज का वेदर अपडेट और वेदर अपडेट क्या क्या था, आइए आपको बताते हैं, आप तक बात पहुंचाते हैं।
0: वेदर अपडेट। रेडियो चिन्ना वेदर अपडेट। रेडियो चिन्ना वेदर अपडेट।
1: ये आज का मौसम होने वाला है ऑसम, क्योंकि आज कड़ी धूप के साथ साथ बादल भी देख सकते हैं। इट्स अ सनी डे, बट देयर आर चांस कि गरज बरस हो सकती है, हवाएं और तूफान आपके आड़े आ सकते हैं। इसको इट्स अ सनी डे और आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस।
0: रेडियो चिन्ना वेदर अपडेट।
1: तो आज का हॉट डे आपको देने वाला है काफी दिक्कतें, अगर आपने इन चीजों का ख्याल नहीं रखा। देखिए, हीट वेव के चलते या इंटेंस गर्मी होते हैं ही, आपने क्या करना है, इफ इट्स नॉट नेसेसरी बाहर ना जाए, और ऑफिस वगैरह में जो बैठे हैं जिनको इंडोर्स में काम रहता है, सो स्टे इंडोर्स, और पीक टाइम जो रहता है दोपहर के आसपास, उस टाइम बाहर गेड़ियां ना मारे।
0: वेदर अपडेट।
1: गाड़ियों को शेड में खड़ा करें और प्रोटेक्टिव रखें। अगर आप धूप में खड़ा करके जा रहे हैं तो प्लीज यूज प्रॉपर टेक्निक्स, ताकि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप इंटीरियर जो है गाड़ी का, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ला सके। All we want is कि आपका दिन अच्छा हो, सुखद हो और खुशियों से भरा हो, and we wish you all a great day. UV index अभी के लिए 6 पर, humidity 54%, wind speed 6 km, visibility 16 km. आज का sunrise हुआ 5:21 पर, आज का sunset होगा 7:39 पर.
2: Come on baby.
1: और दिल की धड़कन रेडियो चैनल, और मैं हूँ जॉक्स, मेरी जान से डायरेक्ट धड़का दे रहा हूँ.
2: And all my thoughts are put down in one line.

और इस फ्रीक्वेंसी आप सुन रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM। दोस्तों ख्याल रखिए कि आपने जरूर और जरूर जुड़ना है, अपने व्यूज इमोशंस थॉट शेयर करने हैं हमारे साथ। 8899-04-904 इज द नंबर। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सीधे हो दरखाते रहो।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। यह है कश्मीर, यह है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहां की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहां की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहां की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहां की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करते हैं। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

0: जूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रेडियो सुनार की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तभी व्हाट्सएप पर है।

जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर हम आप तक पहुँचाते हैं। कह दिया नहीं, लोगों ने भी ये बात मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, वायरल रहा एक वीडियो जहाँ पर एक ओल्ड ट्रेडिशन बताकर मिर्ची लगाई गई एक नन्हे मुन्ने बच्चे को।

ये इंसिडेंट रहा वायरल। अब इंटरनेट पर जब देखा गया, खोज पड़ताल की गई, तो इस वीडियो में बताया गया था एक पुराना ट्रेडिशन जहां पर रेड चिली जो है बच्चों के गालों पर लगाई जाती है और बताया जाता है सालों से ये जो प्रथा है फॉलो की जाती है ताकि बच्चों के गालों पे जो डिम्पल है वो विजिबल हो जाए। अब इस हैक को बहुत सारे कल्चर्स जो है बिलीव करते हैं कि

सच में ये काम करता है। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला तो उन्होंने डाइसेक्ट किया और बताया कि ये जो डिम्पल वगैरह है, गल्ला गोरिया हाथ भी चिट्टे, जिस पर गाना भी बना है, ये एक जेनेटिक्स है और जेनेटिक वेक्टर होने की वजह से ऐसा नहीं है कि मरसवांग लागो बुथिस तो बेस गसन दो। अब ये जो डिम्पल वगैरह है ये गुती से कसा गलत मैं ये ऐसे मिर्ची वगैरह से नहीं होते, और अगर ऐसी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो बास और फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम पर वायरल था वह सब पर आ गया। मैं हूँ जॉक्सू, रहक धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: जी हाँ दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, यू डोंट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू Make it। और दिल की धड़कन रेडियो चैनल, मैं हूं चॉक्सिस, मेरे यार सिरे हट धड़काते रहो।

रिचा 90.4 FM हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप शो में। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं सलीम। सलीम लिखते हैं कि सर पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, आप सबको ईद की मुबारकबाद, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट लाइफ अहेड, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ईद अच्छी तरह मनाई होगी। दोस्त मनाई तो सही, दबा के मनाई, खुशियों से भरी ईद। उम्मीद हम भी करते हैं कि आप सब ने ईद पर खुशियाँ बांटी भी होंगी और पाई भी होंगी। थैंक यू सो मच सलीम हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं शो में आपका नाम सब तक पहुंचे और आप भी शो का हिस्सा बने, 8899-04904 इज द नंबर। और इस फ्रीक्वेंसी पर सीधे हक धड़काते रहो।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। व्हाट्सअप शो में आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट्स ऑफ नेचर की। जी हाँ, आज का टॉपिक गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे, आप तक ये बात पहुँचाएंगे कि क्यों है ये नेचर के गिफ्ट्स, ये कुदरती ज़खीरे हमारे लिए ज़रूरी। कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो नेचर ने हमें नवाजे हैं और जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनके बिना हमारा सर्वाइवल, हमारा लाइफ नामुमकिन है या इनकम्प्लीट नहीं, नामुमकिन मेरी जान, क्योंकि ये ऐसे गिफ्ट्स हैं जिनके बिना इंसानों का वजूद है ही नहीं। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप शो में आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट्स ऑफ नेचर की। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जिन्हें पाकर आप ये समझते हैं कि

अगर ये नहीं होते तो इंसानों का सर्वाइवल जो है जीरो रह जाता। गिफ्ट्स ऑफ नेचर, आप भी टॉपिक के बारे में जरूर हमें बताएं, अपनी बात हम तक पहुंचाए। 8899-0409-0409 नंबर आप पर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, डीएम करके भी शो में शामिल हो सकते हैं।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026। ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो टू लिफ्ट द ट्रॉफी मार्क योर कैलेंडर फॉर दिस नॉकआउट T20 क्रिकेट कप Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. मीडिया पार्टनर TRK न्यूज कश्मीर नशा मुक्त लोलाब T20 क्रिकेट कप 2026 इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट क्रिकेट एंड क्रिकेट ऑफिशियल रेडियो पार्टनर रेडियो चिनार 90.4 FM

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

एंजॉय कर रहे हैं आप ऑडियस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम। मैं हूं आपका साथी जक्सिस। अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे हमदम मेरे यार। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिलेहक धड़काते रहो।

हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM। What?

0: Bollywood News.
1: बॉलीवुड न्यूज में आइए चर्चा करते हैं बॉलीवुड का जाना माना नाम फराह खान की।
0: बॉलीवुड न्यूज।
1: फराह खान जो हिस्सा रही है ओम शांति ओम, कुछ कुछ होता है, मैं होना जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज का उन्होंने कुछ शेयर किया एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। कहा कि जब कुछ कुछ होता है की शूटिंग हो रही थी, वी वर वेयरिंग ट्रैश बैग्स क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, हड्डियां जम रही थी और कुछ नहीं मिला तो बस ट्रैश बैग्स का सहारा था, मतलब यूज ट्रैश बैग, नए ट्रैश बैग्स पहने और उनसे ही गर्मेश जो है हमें मौसूल, याद रखिए मौसूल हो रही थी। अब मूवी का नाम है कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ तो होता रहा होगा। अब फिलहाल फराह खान ने शेयर किया और आ गया बॉलीवुड न्यूज में। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुना 90.4 FM मेरी जान सिटी हट धड़कन।

0: Dr. Zeus.
1: कौन आया?
2: Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. Tech Talks. टेक टॉक्स में आइए आपको बताते हैं, गूगल कर रहा है प्लान कि वो रिलीज करने वाले हैं 32 मिलियन मॉस्किटोज कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में। अब रीजन है कि वहां पर जो डिजीज वगैरह है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए इन मॉस्किटोज को रिलीज किया जाएगा। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सिरे वक्त धड़काते रहो।

इमिंग यू हियर और जुड़ने वाली है आरजे दीबा आपसे लेकर शो चुनार बीस एंड आई सी यू टुमारो 9:30 to 12 अगेन एंड टिल वी मीट अगेन कीप योर हेड्स हाई वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, रेडियो चुनार सुनते रहें, प्यार देते रहें और सुनना ना भूले शो चुनार 20 आरजे दीवा के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मसलामा।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: नशा सिर पे चढ़ के बोले मूव योर बॉडी हॉले हॉले, बिना पंख उड़ के अब उस पार जाने।

तो मैं इस पार आ चुकी हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने। देखिए मिस कर रही थी, मैं रहन नहीं चाहता है मुझे आपके बगैर। 90.4 रेडियो चुनार प्रागा सो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स और रुपये।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल हैं जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा हो जावेद रहेगी।

पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तकलीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तकलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंग

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। RJ Zoo.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
1: टाइट वेरी टाइट

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन. अब देखिए, शो बराबर 2 से 4 चलता है और अभी भी 1 घंटा बचा है हमारे शो में, और दैट्स अ लॉट. फिर भी अगर देखा जाए तो ये लाइक दिस 1 आवर गोज सो फास्ट, और पता ही नहीं चलता कैसे 4 बज गए और आपका और मेरा साथ खत्म हो जाता है. पर अभी के लिए दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. 8899049904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं वास्ट्रा, शो है हंगामा. मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की।

0: पड़ोसियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा ओ जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंग

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पर धड़कते हैं।

जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तखलीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करते हैं। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तकलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम

0: की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। यह है कश्मीर, यह है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहां की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहां की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहां की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पर धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करते हैं। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंग

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

शांति, तुमने तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली। और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं क्योंकि क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेहरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खाते हाँ, कहीं किसी जन्म में उनका मुझसे फिर फला पड़ गया ना। तो आप मुनियादार मुनियादार या नाराज कला महीने बहुत तो नहीं हो रही है।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।